के सामे तेरी वाणी आई कोई ना वो ना जाने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा।

पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ

निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के पूपन के पूप हो के दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के देवैया रोग सोग के मिटैया के दौमानी महामान हो विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो जोबन के जाल हो के कालू के काल हो के सत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो शतर तारी शत्रिपत शैल रूप शेतनाथ शौणी कर शाया बर शत्रिपत गाइया विश्वनाथ विश्वंग पर वेदनाथ बाला कर बाजीगर बान तारी बंदन बताइया न्योली कर्म दूधा तारी विद्या तर ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे नैक ध्यान हूँ ना पाइया राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याइया देव देव तान कौ सुरेश दानवान कौ

जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु गरीब निवास वालिए कुल आलम नूरे कायनात श्री कलगी धर दशमेश पिता अमृत के दाते पंथ दे वाली आपे गुरचेला शमशीर बहादुर जी तख्तां वाले ताजां वाले फौजां वाले बाजां वाले साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहिब जिन्हां दे पावन सतयुगी तप स्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी विखे सतगुरां दी पावन सतसंगत रूपी गोद दे अंदर हाजरियां भर के वडभागी हो रही सतगुरु जी दी साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहिब जीआं दी पावन अमृतमई गुरबाणी दी चल रही लड़ीवार कथा विचार राही गुरचरणा दे नाल जुड़दिया होया होर आत्मिक लाभ प्राप्त करने दा समा है। सरबत माई भाई जग्यासु जन मन चित बिरतियां एकागर करके गुरचरणा दा ध्यान धरदिया पावन गुर शब्द दी विचार दे नाल जुड़िए मन की एकाग्रता अते मुख की पवित्रता वास्ते गुरु साहिब जी का बख्शिश कीता अमृत नाम प्यार दे नाल मुख हो उचारीए जी।

प्रसाद तोमर छंद साध तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस जन्म चरण विहीन चकल अंतर रूप पाद अंचल तेज उदार अंचल तेज उदार अनभिज्ञ रूप तुरंत सब जगत भगत महानुरंत जस तिलक धूप्र प्रधान दस चार चाहु प्रधान अगल रूप अपार सब लोग स्वर्ग विदार कल कल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीन सब कर्म धर्म प्रवीन अनखंड अतुल प्रताप सब था प्रयो चल प्राप सब था प्रयो जय छेद वन चार गाल तबेद चार गाल तबेद जह निर्द निगम का हंत जह जयत भगत मेयंत अनभिज्ञ अतुल प्रताप अनखंड अमिल प्रताप जय की जगत पसार रचयो विचार विचार अनुभव रूप अर्पण कर तल प्रतल प्रखंड प्रतल प्रखंड जय अर्थ ब्रह्मांड किने सोचो ब्रह्मांड सब किने सोचो ब्रह्मांड सब किने रूप पसार रूप पसार जय गोद इंद्र निर्वार ते प्रकोट सन विचार ते राम जन रविश्वर विधि पूर्ण कपूर पूर्ण कपूर कई सिंध बिंदन केंद्र कई मचन चंद नेंद्र कई जवात कुमार कई विधान अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद्र बार बुचार कई वेद्र बार रूप कई राम रुपन रसन रूप कई कोकाव भणांत कई बेद भणांत कई सात श्री मृतवान कई सात श्री सुपुरान कई ंत कैदास कंत कंत दान अवतारूप कौन्यूप

ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਕ
ಬಹುಮಾನ
विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्वभरण है जे बीज मान गे विखे सदीव करम भरम है अद्वेख है अभेख है लेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर में विशेख अनुमानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण और कुरान नेत नीत कह बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइए गंज आदि देव है कहो सो कैस पाइये जिमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन व मकान प्रमाण तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न

न यंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है। न यंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया।

न अंग है न रंग है न संग है न साध है ब्रया है पवित्र है पुनीत है ब्रह्मात है न सीत है न सोज है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है।

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त अद जे बड़े तपस्त बीबी सिखिए बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखिए अगाध अद देव गे अनाथ बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिए सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह गया।

सात गेट बिखे बसै सब ठार मैं निर्धार। जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र, सर्व ठार बिखे रम्यो जय चक्र चिहन न चित्र। आदि देव उदार मूर्त का नाथ अनंत अगन आदंत न जानिए अभिखा।

जाच के नर माछ मानस मुर्ग उर्ग पार नेद नेद पुकार ही सेव सकर मुहचार सर्व सपत बतार के तर जाप ही जे जाप आद देव अगाद तेजन आद मुर्दा ताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे हो विराज धिराज राज प्रवीन जच गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय माये वैस नंगे बिखय विराज सूद्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भीड़ भी

तीर्थ यात्रण देव पूजा गौर के न अधीन सर्व सपत अवतार के तर जानिए जेह जोत शेष नाम सहस फरण नेत पूर्ण होत सोत सोत हटे सभ सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब पड़त पड़त थके महागव गर्द गाड़ अनंत हार हार कहो सभो मेरे नाम नाम तुरंत वेद भेद न पायो लखे।

ध्याय ध्याय थके सभय कर कूट कष्ट तुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पचर पार। सोत सोत थके महासुर पायो नह पार। त्वा प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन। सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा। को आत्मा स्वरूप है कहाँ सृष्ट को विचार। कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण है कवन सुरक कह नरक। को सुगड़ा को मूड

कहाँ रंग राजा गवन हरग सोग है गवन गोरो की रागी गवन कहोता तुम है तवन दोहरा। कवन रिष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश कहाँ चेतन की चेष्टा कहाँ चेत प्रकाश दोहरा। कहाँ नेम संयम कहाँ कहाँ

डावरू डवंगे बबर बवंगे भुजा फलंगे तेज बरंग लंगुड़िया फांदे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत जमके भूखण दमके अत्से जमके फुंक फनंग जय जय हुसी मैखा सुर मर्दन रमक बर्दन तैत जिनंग तंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंडे अखंडन खून खिते दामनी दमंकन तुजा फरंगण फणि फुंकारण जोध जिते सरदार विवरखंड दुष्ट प्रकरखंड पुष्ट प्रहर खंड दुष्ट मथे जय जय होसी मैखा सुर मर्दन भूमा का सलूर्द अधे दामरी ब्रहासन सुछब निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्ता सुर आचन युद्ध ब्रह्माचरण निदयन राचन धर्म प्रते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय होसी मैखा सुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अग ओघ निवारण दुष्ट प्रचारण सृष्टु वारण शुद्ध मते फणि अर्भुंगारण बाघ बकारण सस प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहर तेज तुलंग जय जय होसी मैखा सुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारण जिच्छुर हारण धूम धुकारण द्रप मथे दाढ़वी प्रदंते जोग जयंती मरुज मथंते कूड़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय होसी मैखा सुर मर्दन भरम विनाशन धर्म धुजे घुंगुरु घमंकण सस झमंकण फणि अर्भुंकारण धर्म धुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगम था हे एक वृते जय जय होसी मैखा सुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मनुबंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरू कुमार।

तेज प्रकार खंड धुंध तपे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती आद नाद अगाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी सस प्रकार खंड आद नील अगाद भे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिछ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर नंके आद तंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्ता सुरखंडन सोम्भ चक्रत निसोम्भ मथे बारज विलोचन प्रतन विमोचन सोच विसोजन कौज कसे दामनी व्रह से सुख सरना से शुभ्र सुभा से दुष्ट कसे चंचला ब्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मखा सुरमर्दन आद नाद गाधोर्धन घंटका विराजे रुण झुण बाजे ब्रह्म भाजे सुनत सुरन को किल सुन लाजे किल बिख भाजे सुख उपराजे मधुरंग दुर्जन दल दज्जे मंतन दज्जे सभ न भज्जे रूह रणन जय जय होसी मखा सुरमर्दन चंड चक्रतन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर ते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मथे जाल पा जयंती सत्र मथंती दुष्ट प्रदा

अनंगी अगाध गते विरलाज विहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आदि प्रति सुर नर प्रतिपालन पद दोधारण दुष्ट निवारण दोख हरे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन विश्व विदुन संश्लिष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रदर खंड पितल तले अष्टायद बाहन बोलन बाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध प्रति दुख दुख प्रवचन सेव प्रवचन संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारम सन्ना

त्वप्रसाद पादड़ी छंद। तुम कहो देव सर्वं विचार, जिम कियो आप करते विसार, जद बहुतन।

नहीं भेद भ्रम जे रंग रूप नहीं एक धर्म जे सतर मित्र दो वेग सारा छह स्वरूप अब चल पार जानी न जाय जह रूप रे कहे बास दास कहे कौन वे कहे नाम दास है कौन जात जह सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चहन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल और धंग विरह सिद्धंग स्वरूप धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंछेज तेजन भिजदाक जल थल महीब बंतन दुरंत जय नेत नेत निसिदिन उचरंत पायो न जाय जय पार पार दीनान दोख दहता उदार कई कोट इंद्र जह पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मानंत जह नेद नेद निस दिन उचरंत त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संतु बार कनी मन गारे पछ पशु नग नाक नरा देव सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल में थल में पल में गल के नहीं कर्म बिचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत नहार दाहत है दुख दोखन का दल दुजल के पल में दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूरन की पूरन प्रेम की प्रीत संभार पारण पाए सके बदमापत वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज करोख रुहान की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपेय हंगना भेव रखियो भ्रम से भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ नाये पूरण प्रेम प्रभाव बिना पश्यो किन श्री पद्मापत पाए आद अनंत अगाध अद्वेक सो भूत भवेख भवान अभय है अंत विहीन अनाद मावादा कदो गचित्र छ है लोगन के करता हरता जल में तल में भरता प्रवह है दीन दयाल दया का श्रीपद सुंदर श्रीपद मा बते है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह है देह विहीन स्नेह संबोधन देह विरक्त गेह अच्छ है जान को देत जमीन को देत जमान को दह काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पद्मावत है

अत्र के चलैया छेद छत्र के थरैया छत्र धारियों के छलैया महासतरण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़िया उसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया ओ विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हो के मान है। ज्ञान हो के ज्ञाता महाबुद्ध ता के दाता देव काल हो के काल महाकाल हो के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमाल ध्यावे गौर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी आराध्य तेरे नाम है। फराके फिरंगी मान

किंचित वह उदम जा आहर हर जियो परिया सल पत्थर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहाओ जन पिता लोक सुत बंता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवे सैको सा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया।

गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम त्यावे। उदम करे पल के प्रभाती इश्नान।

अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भ्रम ऐ भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम

लाल मुर्तजुनी साहब पंकज प्रसाद आसा महला पहला वारस लोकाना श्लोक भी मेले पर लिखे टूटे सराजे की तुने श्लोक महला पहला बलहारी गुरु अपने देव हरि सदवा जिन मानस देते की करतना लागी वार महला दूजा जैसा चंदा।

विस्मादनाथ विस्मात वेद विस्मात जीव विस्मात पैर विस्मात रूप विस्मात रंग विस्मात नगर सर जंग विस्मात पाण विस्मात पाणी विस्मात अग्नि खड़े बड़ान विस्मात धरती विस्मात खाने विस्मात सागर प्राणी।

मुसलमान सब शरीर पर पकड़ विचार बंदे से जे पहुंच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाह सलाह अंदर सर पपा तीर्थ ना हर चा पुनिया करवास बेकार जोगी सुनते आऊं जीते अलग

0: हल मल खाए सुझाए पाए मोर कंदे पद गवाई बिन ना बैकट थाए न पाए रह बिबाणी मड़ी मसाणी अंदर जाने फिर फिरताने सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन बसाए
1: नानक हर पे सो पाए आसन देसी।

महिंदातली काग जी मिला तमसुक लाइए कूड़ा लाल जी छटिया हो एक मन लगते आइए फल देवे पाइए देवे कार कमाइए जे हो वह पूर्व लिखे आता तो उतना दिपाइए मत थोड़ी सेव गवाइए।

नानक में सर गाय कृत का जुग जुग फिरटाई है ज्ञानी बुझेता है सतगुरु संतो का त्रम रथवा त्र त्र जते का जोर रथवा द्वापर तुपे का सतगुरु।

तगना तू दसपूत महला पहला तगना इंद्रिय तगना नारी पलके थुपवैन दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेहवा तगना की वेद का आपे वत्ते वड़ता गे आवरा।

सच्चा कर के कोई ना पिटे जाए सच्चा के जीवा लगा प्रंसल कहते जाए सच्चा किसे लगा दो अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता पंजवा पाया करते ताहा पाको वित पापी स्वीकर गड़िया।